0: दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी,
0: तू झोंके चले तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल नमस्कार। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: नमस्ते सर। नमस्ते, क्या बात है यार? उठाई मिले भाई जान।
3: हाँ बताओ, नाम बताओ।
2: शहजाद खान पुराने निजाम। ये अभी अभी तक जो है वो खुलाई नहीं है अपना काली टोपी लाल रंग।
3: हमारे सर आपको आपकी फरमाइश कहेगा।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
0: नमस्ते सर, आपको और आपके सभी मित्र जन सुनने वाले को। बताएं गाना कौन सा सुनना है आज आपको?
1: आज मुझे जो गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है फकीरा। गीत है आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरा सच्चा हो जाए या फिर कर ले बेईमानी। सजन फरेबिया फरेबी साजना, ये की सुनना।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं मैम।
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर। मोनिका।
0: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: चल कहीं चले सजना, प्यार यहाँ करना है मना।
0: बिल्कुल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अश्वन्या।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: अश्वन्या संजय कॉलोनी से।
0: हाँ जी,
1: गंगापुर सिटी से।
0: गंगापुर सिटी से बात कर रहे हैं, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: कच्ची कली।
0: कच्ची कली?
1: हाँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: स्कूल जाते हैं।
0: कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: तीसरी।
0: तीसरी क्लास में पढ़ते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है आपको?
1: क्या?
0: कौन सा विषय अच्छा लगता है आपको पढ़ने में? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत?
1: हिंदी।
0: हिंदी?
1: हाँ।
0: अच्छा अच्छा, आपका खाने में क्या अच्छा लगता है?
1: खाने में पनीर मटर।
0: पनीर मटर?
1: अच्छा, पनीर।
0: और दूसरों को खिलाने में क्या बढ़िया लगता है, जैसे आप हमको खिलाए तो?
1: जो आपको पसंद हो।
0: अच्छा, वो बिल्कुल सुना रहे हैं आप, आपकी फरमाइश का ना रेडी लिस्ट में कुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: सर, नमस्कार
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: भानोर, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी, आप इतनी दूर से हमें सुन रहे हैं। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: भानोर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है पूर्णिमा।
0: जी,
1: मुकेश और लता जी ने गीत गाया है।
0: जी,
1: गीत के बोल है, हम सफर मेरे हम सफर, अंक तुम पर बाज हम। ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ रेडियो डीएस गंगानगर के इस चैनल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में आपने कुल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
4: नमस्कार जी।
5: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
4: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलुसेड़ा से।
5: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से आज आप।
4: सर मेरा नाम है इंतकाम और गाने के बोल है गीत तेरे साज का तेरी ही आवाज में।
5: बिल्कुल सुना रहा हूँ तुलसीराम जी आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: विनोद कुमार सैनी।
0: विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी मौकला।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: सर मूवी का नाम है नशा और सॉन्ग का बोल है वक्त ने हमसे कैसा लिया इंतहा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर
0: जी। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ सर।
0: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: फिल्म का नाम है मौसम।
0: मौसम
1: भूपेंद्र और लता जी की आवाज में है, दिल टूटता है फिर वही।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का, बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: कृष्णा शर्मा।
0: कृष्णा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: बेरन।
0: बेरन सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: मैम शशि भूषण कुमार।
1: शशि भूषण जी कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: रहनमल उड़ीसा से बोल रहा हूँ।
1: उड़ीसा से, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: सर योद्धा फिल्म का प्यार बड़ा मुश्किल है करने का तैयार हूँ बहुत।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश है, बेहतरीन सा गाना। रेडियो डीएस में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर कितने लगेगा वो गाना फरमाइश होगा?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जी भी है योगेश जांगड़े पे मेरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फूल और कांटे से सुनवा देंगे, तुमसे मिलने को दिल करता है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल के। धन्यवाद।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर के
1: हेलो
2: हेलो रेडियो DS
1: यस सर
2: कैसे हैं सर आप
1: हम बहुत अच्छे हैं सर आप बताएं कैसे हैं
2: मैं चले आपसे सुरक्षित सर जी ताराम बोर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर आपने रेडियो DS के जी सर बहुत शानदार मजेदार गुंडा दर्जेदार कार्यक्रम होते हैं सर
1: धन्यवाद सर आप सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है कि आप इतने दूर से गंगापुर सिटी के छोटे से रेडियो केंद्र को सुनते हैं बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप
2: मुझे आपके प्रोग्राम में सुनना है सर बंटी और बबली गजरा रे तुरकारे कारे नैना ये गाना सुनना है सर मुझे आज
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको आपकी फरमाइश से बेहतरीन सा गाना रेडियो DS में कॉल किया बहुत बहुत धन्यवाद

0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गाना नहीं सर।
0: नमस्ते नाम जी।
1: हाँ जी सर नमस्कार।
0: जी नमस्ते नाम बताएं।
1: जी मुसाफिर साई नगर पालिका।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: गाना नहीं सर कब्बाली सुनना चाहेंगे।
0: बताए कौन सी है?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: दिलराज सैनी।
1: सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: हम रीको गंगापुर सिटी से बात कर रहे हैं।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? हेलो
0: सर, कोई अच्छा सा गाना चलाओ, मतलब

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:14 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: शिवम मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं मीणा जी?
0: राधे जी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: किताब।

0: तुझे देखकर किसी की याद आती है। किसकी पता नहीं, किसकी बस याद आती है। मजहर को क्यों मारा?
1: मजहर को शांताराम ने मारा।
0: और शांताराम को क्यों मारा?
1: तुझ तक पहुंचना था।
0: अगर मैं तुझे मार दूं अभी यहां तो
1: मुंबई नहीं ले पाएगा।
0: मुंबई क्या तेरे जेब में पड़ी है?

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: तो वक्त हो चुका है 12:25 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पल। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार हमारे पास सूचना आई है कि अगले 3 घंटों के दौरान बूंदी, करौली, सवाई माधेपुर के कुछ अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ तेजी हवा चलने, हल्की बारिश के साथ साथ आंधी तूफान आने की बहुत अधिक संभावना है। धन्यवाद।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बता।
4: हेलो, नमस्ते सर।
3: नमस्ते, नाम बताएं।
4: आशु वर्मा।
3: वर्मा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: दरगाह जा प्रदेश में।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका। आपकी

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: नाम बाबू खान है।
1: बाबू जी बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी टूली है।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: लागी चीते ना आपको सनम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश है बेहतरीन।

0: सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश। हेलो जी, नाम बताएं। अकरम जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: मैं नाच लो आज चाहूं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:37 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद मिलते हैं 1 बजे नए तरह ने कार्य

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।

0: कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों गुड आफ्टरनून।

0: तो वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे बलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नहीं कराने। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार हमारे पास सूचना आई है, अगले 3 घंटों के दौरान बूंदी, करौली, सवाई माधेपुर के कुछ अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ तेजी हवा चलने में हल्की बारिश के साथ साथ आंधी तूफान आने की बहुत बड़ी अधिक संभावना है। धन्यवाद।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग।
1: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस, गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: एक बजकर 10 मिनट का दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों, नए तरानों के बीचों में बातें करते हैं बरसात के मौसम में हमें अपनी सुरक्षित कैसे करते हैं। बिजली वे तूफान से बचाने, तेज गरज चमक हो या खुले मैदान या पेड़ों के नीचे ना खड़े रहे, घर के अंदर रहे और इलेक्ट्रॉनिक सामानों से दूर रहे। पानी से होने वाली बीमारियां, बरसात के पानी में उबला या साफ पानी पिए, बरसात के बाहर का खाना ना खाए, हाथ धोकर ही खाना खाए। जल भरा से सावधान रहे, भरे हुए बरसात के पानी में चलने से उनों में गड्ढे या करंट का खतरा होता है। बच्चों को खास तौर से पर ऐसे पानी से दूर रहे और बरसात के मौसम में हमें अपने कपड़ों से सुरक्षित रहे, जैसे रेनकोट या छाता इस्तेमाल करें। फिसलने से बचने के लिए अच्छे वाले चिप्स वाले जूते पहने। बारिश के वाहन चलाते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाहनों को धीमी गति पर चलाएं, बारिश में सड़कों पर फिसलना या भारी हो सकता है, इसलिए स्पीड कम रखें। अपने वाहनों को हेलमेट या का उपयोग करें। हल्की बारिश में धुंध में या हेलमेट ऑन रखें। बैक

निकल नहीं सकती और इंजनों में पानी भर जाता है और गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं। हमें धीमी गति से बारिश के मौसम में चलानी चाहिए, गाड़ी का स्पीड से नहीं चलना चाहिए। अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी स्पीड हो सकती है।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ आरजे खुशी। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हर सुबह मैं कहती हूँ कि अपने जीवन में अगर थोड़ा सा बदलाव अगर हम हर सुबह लेकर आए तो पूरा दिन कितना बेहतर जा सकता है, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल। और आज भी मैं एक ऑब्जर्वेशन से आपसे बात करने वाली हूँ। भगवत गीता में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण तब बोलना शुरू करते हैं जब अर्जुन उनसे एडवाइस मांगते हैं। यानी कि पहले जब अर्जुन इतने परेशान होते हैं तो श्री कृष्ण अपनी तरफ से बोलना शुरू नहीं करते। अगर हम सोचिए, अपनी लाइफ में ये अप्लाई कर दें तो हमारी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी, है ना? सोच कर देखिए। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी, 89.6
0: पे रेडियो डीएस।

0: किसी के घर पर।
1: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

दोस्तों वक्त हो चुका है 1:31 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नहीं तराने। दोस्तों हमारे पास मौसम विभाग से सूचना है, अगले 3 घंटों के दौरान बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर के अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ साथ तेज हवा चलने की, हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान आने की अधिक संभावना है। धन्यवाद।

0: देखो वैसे तो सर्दियों में ना किसी का एक्सरसाइज करने का मन करता नहीं है, लेकिन अगर सर्दियों में आपने एक प्राणायाम कर लिया ना तो आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने का एक आसान तरीका आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जिनके पैर के नीचे के जो तलवे हैं वो एकदम ठंडे हो जाते हैं, और जिनको साइनस रहता है या नाक बंद हो जाती है, कफ बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें सर्दियों में एक प्राणायाम करना चाहिए जिसका नाम है सूर्य भेदी। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी बाई नाक को बंद करना है और दाई नाक से सांस लेनी है, बाई से छोड़नी है, बस आपको इतना ही करना है ना आसान। लेकिन आपको पता है ये इतनी इफेक्टिव होती है, आपकी पूरी बॉडी को गर्म कर देती है, और अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, उसको भी ठीक कर देती है। अपना कर देखिए और डिफरेंस खुद फील करें। आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी,
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 पे रेडियो डीएस यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं इस वक्त। आप मेरे साथ टून करें 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली विसरी यादें कार्यक्रम 89.6

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं बात करने वाली हूं बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार राजेश रोशन की। उन्होंने कभी हमें इमोशनल किया तो कभी हंसाया। आज भी लोगों के दिलों में वो राज कर रहे हैं और बेहतरीन गाने बना रहे हैं। आइए सुनते हैं इनके

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हुरिया हुरी हप्पू हप्पू हुरिया।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ हम बात कर रहे थे राजेश रोशन जी की। राजेश रोशन जी ने छोटी उम्र में संगीत की बारीकियां सीखनी शुरू की थी। उन्हें शुरू में ये शिक्षा उनकी माँ ने दी, लेकिन बाद में ये शिक्षा वो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी से लेने लगे। कुमारा बाप के लिए गाना कंपोज किया, गाने के बोल थे सज रही गली, जो इन्होंने 15 किन्नरों के साथ रिकॉर्ड किए थे।

0: बच्चा कहाँ से लाए बोलो ना।
1: मैं मंदिर पहुँचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के, ये माँ को दे दूँ मंदिर में रख दूँ। पंडे ने देखा वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई भी लाश दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना।

जाकर पूरा बाहर सौ जतन लगाया, कोई काम ना आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला, फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर सा लादा, मैं वापस भाग

0: यहाँ बीच में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: फिल्म निर्माता राकेश रोशन की फिल्मों में अमूमन संगीत उनके भाई राजेश रोशन का होता है। रोशन ने भाई राकेश की फिल्मों के अलावा अन्य फिल्मों में भी संगीत दिया है। 1975 में प्रदर्शित जूली फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई और सफर आज तक जारी है। इस फिल्म में दिल क्या करे जब किसी को, माई हार्ट इज बीटिंग, ये रातें नहीं पुरानी और जूली आई लव यू जैसे गाने में रोशन का संगीत श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। जूली की सफलता के बाद राजेश रोशन को शुरुआत में ही नई पहचान मिल गई थी। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। 70 और 80 के दशक में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी हिंदी सिनेमा में पूरे शबाब पर थी, उस समय किसी भी नए संगीतकार को हिंदी सिनेमा में स्थापित होना आसान नहीं था। 1975 में K.S. सेतु माधवन के निर्देशन में बनी फिल्म जूली ने राजेश को हिंदी सिनेमा में पूरी तरह स्थापित कर दिया। इस फिल्म के संगीत की खूब तारीफ हुई और राजेश रोशन को इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का खिताब भी मिला। ये पुरस्कार राजेश रोशन ने एक बार फिर साल 2000 में फिल्म कहो ना प्यार है के लिए जीता। सफरनामे में आज इतना ही, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनिषा आपके साथ।

0: रेडियो डीएस
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बैक टू बैक गाने का कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, मौसम विभाग के अंदर हमारे पास सूचना आई है, अगले 3 घंटों के दौरान बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर के कुछ अलग अलग स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ हवाएं चलेगी और हल्की बारिश के साथ साथ आंधी तूफान आने की बहुत अधिक संभावना है। धन्यवाद।

0: सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: हेलो, वेलकम बैक टू द शो। मैं हूँ आरजे खुशी। सुबह सुबह मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है कपड़े ढूंढने में कि मुझे आज क्या पहनकर जाना है, क्योंकि देखो लड़कों के लिए तो बहुत आसान है, एक जीन्स हो गई, एक पैंट हो गई, टी शर्ट हो गई, शर्ट हो गई और जैकेट हो गई। लेकिन लड़कियों के इतने सारे कपड़े होते हैं और हर सीजन में एक नया फैशन। बाकी सभी लड़कियों को बताना चाहूंगी कि इस सीजन में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है शर्ट्स। अगर आपके पास में शर्ट है तो प्लीज पहनना शुरू कर दे, साथ में उसे पेयर करें वी नेक स्वेटर्स के साथ में। लॉन्ग ओवरकोट है तो बहुत अच्छी बात है, और हुडी तो हमेशा ही ट्रेंड में रहती है। जीन्स के बजाय हम लोग जॉगर्स भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी जो आपके फैशन गेम को थोड़ा सा अप कर देंगी। लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: पिछले कुछ सालों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि कपड़े ना बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं। मैं हूँ आरजी खुशी। जैसे कि आज हम लोगों ने बात की है फैशन की, तो लड़कियों को इन सर्दियों में कैसे अपना फैशन गेम अप करना चाहिए, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ भी खरीदना चाहते हैं जो महिलाएं भी यूज कर पाएं और पुरुष भी यूज कर पाएं, तो एक ऐसी चीज है जो हम खरीद सकते हैं। खादी के जितने भी कोट होते हैं ना, वो कोई भी पहन सकता है। वो साड़ी पे भी अच्छे लगते हैं तो वो पैंट पे भी अच्छे लगते हैं। वो लेडीज सूट्स के साथ में भी पहन सकती है तो पुरुष अपने कुर्ते पजामे के साथ में भी पहन सकते हैं। तो अगली बार कोई खादी वाली शॉप आप देखें या ऑनलाइन शॉप करें तो खादी का एक कोट जरूर ले लीजिएगा। घर में सब जने पहन पाएंगे उसको। मिलूंगी कल आपको इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

चुका है 3:48 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक, फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून क्वालिटी 9.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

दोस्तों सुबह हो चुका है 4:17 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज

0: शहर का कमाल DS89.6 शहर
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे. टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया. हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी. हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र. एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं. अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की. एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम. डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी. संपर्क करें 8005598377. इसके अलावा 9983413111.
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी.
3: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है. मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि. सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान. सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस. ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है. वर्तमान में एडमिशन ओपन है. स्कूल का पता:
2: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
3: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान. ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है.
4: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा.
5: तो वक्त हो चुका है 4:30 का. इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का. मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलन. दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस. और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई. दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ. कार्यक्रम की हमारी पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से. सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने. सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर.

0: लेकर आ रहा है।
1: गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन,
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विनोद कुमार सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी मऊकला।
1: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैम, गाना गाने का बोल तो मुझे याद है, लेकिन कौन से एल्बम का, फिल्म का, वो मुझे याद नहीं है।
1: हाँ फिर बताइए।
0: हाँ, गाने का बोल है, मेरी जिंदगी सवारी तुझको गले लगा के।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। थैंक यू मैम।
1: यू वेलकम।

0: हेलो
1: हेलो भाई नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है बाजी और गाने के बोल है मेरे साथी ओ जीवन साथी मेरा साथ निभाना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद बहन जी,
0: वेलकम।

सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली

0: हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ। आओ जी,
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज से जल्दी आ जाएगा नंबर।
0: हाँ सर बताइए।
1: मेरी जहाँ प्यार करो।
0: क्या सर?
1: मेरी जहाँ प्यार करो।

0: में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: सर नमस्कार।
3: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: सर यार कान पुराने नहीं जाओ।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: कदरा मोहब्बत वाले।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: बाबू खान।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: वीडियो खान गंगापुर जी जी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: जीना सिर्फ तेरे लिए।
3: वो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरती।
4: हेलो।
5: हाँ जी मैम।
4: रोहित
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: नशा मूवी का।
5: नशा मूवी का?
4: हाँ
5: सर। ओल्ड में या न्यू सॉन्ग?
4: न्यू में।
5: ओके सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सौरभ मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरी यादों में खोया रहता हूँ।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

थोड़ी सी टूटी हुई हूँ, फीलिंग्स मुझे कंट्रोल कर ले, उससे पहले मैं उन्हें कंट्रोल कर लेती हूँ। ऐसी आधी अधूरी लड़की जो आई लव यू कहने से डरती है, क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दोगे?

0: नहीं सोएगा तो पागल हो जाएगा रे तू।
1: कुछ पता चला उस मैनेजर का?
0: पुलिस कहती है ऐसा एक मैनेजर था लेकिन अब नहीं है, चला गया। मुझे तो लगता है

दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे थे 9.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों 6:30 का समय हो चुका है। फिलहाल आप सुनेंगे आप भक्ति संध्या।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

0: दोस्तों संध्या के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 89.6।

हैलो जी सत श्री अकाल तुम हमने साडा गाना सुन के हटे हो सुनिया लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्यो तुम गाना किवें लग्या। मेरे अगले गाने सुनने लिए मिक्सिंग यूट्यूब चैनल जरूर सबसक्राइब कर लियो। थैंक यू सो मच।

दोस्तों रात्रि के 11 बज चुके हैं, आज की सभा का यही समापन करते हैं। प्रातः 5:55 पर सुबह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आपके ऋषि भाई को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।